रेडियो अमल जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το ούγε για πότε σα πάρσει, δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα αρχανά, πας απάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα είμαι ζή, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Δελκόλ τα αρχανά, τα γιλεύε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βοήβη σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব স্যার অর্ডার তে মিলাবিজি।

0: लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: पातशाही जमुन सरा जकाचे दादा युवाजे रेडियो नदा दादा बावर अमन आव युवाले हक दे दलता तस तरसी सही हबरुना आव खंदवर परुग्रमुना आव जयम आरजे फरशहान तस आव रहे रेडियो अमन 88.4 करक।
2: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज़ रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

0: चल
1: ज सुमेर द मिश्री बांड महल हसन हेलना ज प मिश्री बांड के द तेरो लसुकारुना द कॉस्मेटिक्स कारोबार कोमा पकोर के मल्की और गैर मल्की हर किस्मा प्रोडक्ट हर सोमा मा पजवन के दस कंपनी न दिली दिली खलक व सर दुमरा मीन और खलक व दुमरा फायदा मिलावेगी आगा कंपनी द इश्मा कंपनी दा चाचा इश्मा प्रोडक्ट पकारी मा सरा मिलावेगी और गारंटी सर बोर को पाकिस्तान जिंदाबाद इश्मा कॉस्मेटिक्स पाइंदाबाद।

हाजी मैसेज को अपने मैसेज रोगली था सोला मैसेज रोगली दे मैसेज पे शामिल कमा और 12:45 मिनट में विजत आस्ता ऑफर दर कोमा और ऑफर च कोम दे अबडर जात खुले ऑर्डर जात जबरदस्त ऑफर बतास्तु दर कोमा ता सुबह बोलो हुई है सही था ना।

अगेन माँ उम्मीद कहती हैं जी बिल्कुल माई सुख दे चे शे नो ये कहना चे स करे हगाबो रे बे मुझे बतोता दो को चे अल्लाह दे मुझे भाई कामयाब किया आमीन सुम आमीन नन्ये वल गवाक ना नुर हो पुए चे अरसुक हाँ बिल्कुल प्रिया माखा थैंक यू सो वेरी मच जो जहान मन ना द मैसेज को लो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जो आयशा सिद्दीकी अदबनु को ना रेहान भाई सरंगी रेहान भाई दो हफ्ते बाद रेडियो और रेहान भाई रेडियो में खराब वो वालेकुम अस्सलाम जी थैंक यू सो वेरी मच जो जहान मन ना रेहान भाई सलमन में और का आयशा नूर था जनती वजीर था वदीमत वलगानता अनुता अरुचक तकानी टेलर था प्रिंता उजाला था मरवता रोशनी बाजी था फातिमा नूर था उसपे सलाम में और काली नूर भाई था होता वालेकुम सलाम जी थैंक यू सो वेरी मच बिनोगार जे बेगुना छे गुनाहगार शी हगजेमा बेगुना छे गुनाहगार शी हगजेमा बेकसूरा छे अजार शी हगजेमा मातर उस खपल जनान ले दलिन दे बेजनान छे बदनाम शी हगजेमा ओके जी थैंक यू सो वेरी मच नेक्स्ट कौन है अजय जी नेक्स्ट मैसेज किया है किसने वही ची रेहान लाला आई एम सुमेरा शो नाइस तो रेर खान कवि आहा बाहा सरंगी ओके बाय ओके जी ज साइलेंट लिस्टरी हो सुमेरा मैसेज वेले न शामिल अवे जर खवा शामिल में गोखा बेगम शैतासो वेलकम ना खुश आमदे दर्शवे खा वेलकम माई आवाज दे ओके दे मी आबरू खडक ओके जी थैंक यू सो वेरी मच अगेन आबरू खडक कहती हैं और दूसरे से मैं सुनो भाई इस दुनिया में लाखों चैनल हैं और इस चैनल में लाखों आरजीबी हैं मैंने सिर्फ आपके शो सुनती हूँ और आप इतना मरूर हैं कि पाव जमीन पे नहीं रखते और तुम जमीन को कहते हो कि तुम जा मैंने नहीं जाना बस भाई बस ये थे मेरे दिल के गिले शिकवे लास्ट में आपको और रबड़ी जूस वाला सलाम हो छोटी है ना एंड माह उम्मीद को भी सलाम हो के बाय ओके जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच कल हम नहीं मरूर आवाज नजर तलागी हाँ बुरा चिदा चा खबरे अतरे तासु चा सर जोगदली नवे चा खपल जनु नजर ता एड्रोड्यूस करी नवी नो दासी मा वाए हाँ इस सब बदने लगी चा गाबा संग उजी संग बवी कसंग दा उर्दुन को तासु खोरा सर मनाई गने दा खबरा मी आबरू हड़क भाई मंडे को जो आपने न्यू ड्रामा सॉन्ग प्ले किया था इसका नेम बताओ प्लीज वो ड्रामा था जिप तो जिप जमा हुआ कहना और डेर जाते जबरदस्त ड्रामा था मैं कहता नहीं था खुजो सिर्फ आगा सबर तो वही ची जल के आवाज नहीं सिर्फ आगा मतलब ट्रेलर का समा पर टिकटॉक बांधे देने लो फेसबुक बांधे का समा नूर मीना देखा था लेखा ओ मैं तो खुकार डेर जाते जबरदस्त था खो गुर में खो लगा उसगार समा खा अलीना खान फ्रॉम छोड़े रहा मजा कभी हाँ जी थैंक यू सो वेरी मच जहान मन ना अली नहाना अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई लकमीज हाँ रुगली है मैं फर्द मशकूर एंड रिया वजीर दरुमेन ला स्पेशल सलाम है खलीक नूर भाई था नूरा बकीटो लिसनर था ओके जी ओके जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो वेरी मच यू जहान मन ना हाँ जी भाईजान तरह को कि वो प्रोडक्ट अच्छा सरा मिलो वीजी तरह की वो प्रोडक्ट मिलो वीजी फाइम कॉस्मेटिक्स रॉम द कोर के दिन दुकान देखा तरह कोई के फाइम कॉस्मेटिक्स का तासो पेज नहीं पकोर के दिन दुकान दे तासो वर्ष इस रब दुकान के मौजूद ही तो वर्ष दली दिखा अस्सलाम वालेकुम जो जाहिद कमंगन सलाम सलाम ओके जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच।

0: कौन सीखा है? सिर्फ बातों से।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: अच्छा जी बिल्कुल लश किशन दे ब्रेक मोक हो सके ना मैं दस कल कल बगैर सी कसी कल बने चे बल सो को देखिए ना दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू हो ओ शाफिसल शाफिसल बखेर रोगले द बनी गोल ना डेरे वरजे बाद हो दा गोरा ब्याह जर्माना है डेरे वरजे बाद रोगले बस खैर दे गर्म खूब कड़ाई बिल्कुल ब्याह दबानी गोल गर्मी
1: बिल्कुल दा से गर्मी भी करना चाहिए
0: बिल्कुल दा खबर दे सही दो हो बस गर्मी ने जोन बच गई सही दो कहना बिल्कुल सही दो शाफिसल सब अवेल गोड़े प्रोग्राम से डेर वर्षे बाद कॉल कराई जाए
1: बस तरेक भाई सो माशाल्लाह डेरा जबरदस्त डेर ख्वाश चल चे दो घंटे प्रोग्राम से दस कला कलर था दो घंटे
0: शाबाश ठीक सो इंशाल्लाह से कला कला वे प्रोग्राम तो चखार लगाऊं दो घंटे दे परा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्या ना
1: खबर
0: से खान के भी कहना चढ़ न दी चढ़े
1: बिल्कुल
0: दा चिकला मतलब सरे के पखे के आगा तो डुडई सरा खुरे का ना आगा डर खान और सरा के भी
1: आगा खान कई बोल तरेक भाई थोड़े टाइम से बेदा सलाद आऊ लगी पैदना धनिया मिली है पदरंग दाचे सलाद मलाद पर उबर के कना दे मोरा खान काई कना जे मिस्तो फेदा से पता परी दो ता नो सिर्फ ने लके रे ओदा पूरी डर मजा वे काई
0: जी जी बिल्कुल ला से दे बस इंशाल्लाह शेरे बनो तो चकार देर लगे वी सही दो
1: ओ इंशाल्लाह मैं हूं माशाल्लाह तरेक भाई केर संग टोले मुझे के डर अस ने लका दा और दे फल से नी
0: ठीक है देर मनना शफिसल यो जहान मनना गर्मी ना जोन बच गवा जे तोड़ देना की जी जी वाला वाला
2: रजा कलना
0: नो और भी दसंदर देना बहुत चुके

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज़ रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

हाँ जी, रकीब भट्टे की भाई कहना चाहिए गोल्डन वर्ड्स मत भागो उन लोगों के पीछे जिनको तुम्हारे आगे और लोग नजर आते हैं। बिल्कुल सही खबर है, तो डेरा मना ना और यही कहना है। सिर्फ अपने आप को साफ रखना नेस ईमान नहीं, बल्कि अपनी सोच नियतों और दिल को भी साफ रखना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही।

0: कहाँ बसे सेफर 330 सेफर 344 717 डायल के हाँ देले रुशे शादो हाँ बरे तारुशे गाप तारुशे माजलास तारुशे ऐ क्या पीना शपीना वेला गई बेरेगा तो वाले वाले नला गो हो तासो राजो का ना इतासो ना रोसो नज़बिया बसो करुसे हाँ तो से टोल बरुसे शाम माजलास बरुसरा का वही गाप बरुसरा लगा वही जे ख्वाजे खबरे बर उड़ाई का ना हाँ जी कलर रेडी है चलो जी फर्स्ट कलर तरफ तो सी सुख तुरसरा किम जी ने कॉल करना सवेल को अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर के थे किम जी नाम
1: दुरानी
0: हाँ हाँ दुरानी दुरानी साहबाम नंबर दे पहला ना निवाला है एडवांस ना का नाम जका हो सबाउन आई थी तो हाँ ते सबाउन ता में स्पेशल और के स्पेशल सालों में ना दी دا جرگے پیسالے میں چھ پتو بن دیکھڑا ہے خال کو یہ چھ پ چھ اسو دیکھ لینا خبر کلا رو بسی
1: جرگے
0: خال کو تے لے جو اپلو نہ جرگا مار مارو کڑے سے آہو خبر ہے جی اے
1: کان
0: دا خبر دے صحیح دو نور سرنگ हाँ गली है जारा दुरानी औज वर्कशॉप सराउंड

0: खुशखबरी खुशखबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है,
2: खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है,
1: फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
0: हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवाउथुर निशान वाला खुजीफा कंपनी शिफा तेल, चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी, ओसोस गंजे शवी भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी, नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सरबा ने मालश की, नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुर्जवल बंदवी, विख्तान गण और उजद कवी, देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवी, जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।
3: आरजे शाहिद खान।

0: त्रड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जनाती से तारखना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर बड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला नकवासोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपई पवात लो सीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो दवा मोता चेर

0: दिल में ये सोचा कि मैं भी एक्टर बन जाऊं। किस्मत ने घुमाया, रेडियो अमन 88.4 में पहुंचाया।
1: ओ माशाल्लाह, जबरदस्त। शाह जी बिल्कुल सही नंबर मैसेज से पर इजलिया नंबर देता हुए बिल्कुल नन प्रोग्राम से फ्री टेक्स्ट के वाले से फ्री मैसेज के वाले से और नंबर दें 0345 ठीक छो 0345 933 2580 0345 933 2580 दे नंबर बने प्रोग्राम से कॉल कवली छी।

अच्छा जी, इसमें तरहान तरखान आपसे एक बहुत बड़ा गिला है, वो ये है कि आपसे मैं फरमाइश नहीं करती क्योंकि आप अप्लाई नहीं करते। आज बहुत टाइम बाद फरमाइश की, वो भी आपने पूरा नहीं किया। सलाम टू आयशा, इल्मा, आयशा, जारा, जोहा, जलाल, मिनसहानी, रिहाम खान, सोनिहान, ग्रिड, मलिका, ग्रिड दादी और हफ्सा, इकरा वजीर, आसमा सीपो और रिफात मजीरसानी, छुट्टी मडबा, हम नशना, मनत खचक, मजलूम खचक, रोशी खान एंड ऑल फ्रेंड। डेरा मनन ठोल तो सलाम दोबारा से, तो यो जहान मनना, सलाम एंड वेलकम टू द शो, कैसे हो गुलला और अच्छा जी, आई एम वीर खान, सुनिहान और तरहान को सलाम। डेरा मनना, थैंक यू मैसेज के वाले, डेरा डेरा मनना। तरहान भैया मैसेज कर दे, और ये अमन सिस्टर को स्पेशल सलाम एंड वेलकम। अच्छा जी, आमना सिस्टर को डेरा मनना, थैंक यू तरहान मैसेज को ले।